करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित है संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आपने ट्यून इन किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज सुनहरे पल में हम उस महान संगीतकार की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने खामोशी को सुरों का जामा पहनाया, रोशन लाल नागरथ। 1917 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में जन्मे रोशन जी के पिता चाहते थे कि वो संगीत नहीं कुछ और करे, मगर उनके दिल में एक कसक थी। वो घर से भागकर लखनऊ के मरीज कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने पंडित एसएन रत्नागर से संगीत की वो बारीकियाँ सीखी जो आगे चल के उनकी पहचान बनी। उनकी जिंदगी का पहला सुनहरा पल तब आया जब केदार शर्मा ने उन्हें मुंबई बुलाया और फिल्म बावरे नैन मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक ही रात में सितारा बना दिया।

मुंबई में रोशन साहब का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें एक वक्त दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करनी पड़ी। वही उनकी मुलाकात इरा मोइत्रा जी से हुई, जो एक बेहतरीन गायिका थी। दोनों ने शादी की और इरा जी ने अपने करियर से ज्यादा रोशन साहब के सपनों को सींदा। रोशन जी बहुत नरम दिल थे, कई बार लोग उनका फायदा उठाते थे, पर इरा जी उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। संघर्ष के उसी दौर में फिल्म मल्हार आई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। फिल्म तो नहीं चली, पर संगीत ने धूम मचा दी। संघर्ष के उसी दौर में 1951 में फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म ने रोशन साहब को वो पहचान दी जिसके वह हकदार थे। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि हर गली में रोशन साहब का नाम गूंजने लगा।

दोस्तों, रोशन साहब इतने काबिल थे पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलने में बहुत वक्त लगा। 1963 में आई फिल्म ताजमहल, रोशन साहब ने इस फिल्म के लिए संगीत नहीं बल्कि एक अफसाना लिखा था। साहिर साहब के साथ उनकी जोड़ी इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ताजमहल के संगीत ने उन्हें वो सम्मान

लोग समझते थे कि रोशन साहब सिर्फ गंभीर या कवाली वाले गाने बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे चुलबुले गाने दिए जो आज भी पार्टी की शान है। रोशन साहब ने दिखाया कि वो सादगी में भी जादू फूंक सकते हैं। मुकेश जी की आवाज को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में इस्तेमाल किया वो उनके फन का एक नया पहलू था।

रोशन साहब को राग यमन का बादशाह कहा जाता है। उनका मानना था कि क्लासिकल संगीत ही वो बुनियाद है जिस पर फिल्मी गाना खड़ा होता है। वो अक्सर सुबह सुबह रियाज करते थे और नए सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी फिल्म आरती में उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया कि सुनने वाले रो पड़े। उनके हर गाने में एक अजीब सी नजाकत होती थी, जैसे रेशम का कोई धागा हो।

लता मंगेशकर जी रोशन साहब को अपना भाई मानती थी। वो कहती थी कि रोशन भैया की धुन गाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। रोशन साहब लता जी की आवाज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कई बार वो सिर्फ लता जी को ध्यान में रखकर ही धुन बनाते थे। उनका मानना था कि जो मिठास लता की आवाज में है वो किसी साज में नहीं।

दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि रोशन साहब का सबसे बड़ा काम क्या है, तो मैं कहूंगी फिल्म चित्रलेखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो संगीत दिया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मन रे तू कहीं ना धीर धरे, इस गाने को भारत का सबसे बेहतरीन फिल्मी गानों में गिना जाता है। इस गाने में संगीत कम और सुकून ज्यादा है। रोशन जी ने इसे बनाने के लिए कई रातें जाग कर बिताई थी। रोशन साहब को दर्द भरी धुनों का माहिर माना जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक गानों में भी जो मिठास घोली उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म भीगी रात का संगीत इसका जीता जागता सबूत है। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी ये जुगलबंदी इतनी हसीन थी कि आज भी प्रेमी जोड़े इन गानों को गुनगुनाते हैं। इस गाने की धुन इतनी फ्रेश है कि लगता ही नहीं है कि ये 60 के दशक का गाना है।

16 नवंबर 1967 वो एक काली रात थी। रोशन साहब एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हो गए। उनका जाना संगीत के एक दौर का अंत था। उनके जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को था, मगर वो जाते जाते अपनी विरासत बेटों राकेश और राजेश रोशन के रूप में छोड़ गए, जिन्होंने उनका नाम आज भी जिंदा रखा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को एडिट और रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से मैं बोल रही हूँ, आपकी रेडियो दोस्त कविता अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास। बहुत पुरानी बात है, एक वृद्ध किसान अपने पोते के साथ खेतों में रहता था। उन खेत खलियानों के चारों ओर सुंदर पहाड़ियां थी और थोड़ी ही नीचे एक नदी बहती थी। वह किसान सुबह उठकर अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ भगवत गीता का पाठ किया करता, जो उसे कंठस्थ था, और साथ में काफी मंत्रों का उच्चारण किया करता था। किसान का पोता प्रतिदिन अपने दादाजी को सुनता और वही सब करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी भगवत गीता के श्लोक बोलने लगा, परंतु उसे कुछ समझ न आता, वह केवल उन सब को बोल लेता था। एक दिन उसने अपने भोले स्वभाव में अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं यह सब मंत्र तो आपको सुनकर बोल लेता हूँ, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर मेरा ऐसा करने का क्या लाभ है। दादाजी ने उस समय उसे एक टोकरी दी जिसमें से वो अंगीठी में कोयले डाल रहे थे। वह बोले, यह टोकरी लेकर जाओ और नीचे नदी से इसमें पानी भर लाओ। बच्चा गया और पानी ले आया, पर ये क्या, उसने देखा ऊपर आते आते सारा पानी टोकरी की दरारों में से रिस गया और टोकरी बिल्कुल खाली है। दादाजी ये देखकर हंसे और बोले, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, थोड़ा तेज चलना होगा। बच्चा फिर गया और इस बार तेजी से आया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। वह कहने लगा, टोकरी में पानी लाना संभव नहीं है, मैं बाल्टी में ले आता हूँ। तो किसान ने कहा, नहीं, मुझे तो टोकरी में ही चाहिए, तुम कोशिश करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ तो शायद यह हो पाएगा। इस बार उसने स्पीड अपनी और बढ़ाई और हाफते हाफते पानी भरकर लाया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। उसने अपने दादाजी को विश्वास दिलाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप देखना इस बार मैं कितनी तेज गति से काम करूंगा, फिर भी पानी नहीं आएगा। वह यह कहकर नदी की तरफ दौड़ा और दादाजी को दिखाते हुए टोकरी को नदी में डुबोया और बाहर निकालकर पूरी तेजी से ऊपर आने लगा, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। अब दादाजी बोले, दादाजी मुस्कुराए और बोले, टोकरी की तरफ देखो। बच्चे ने जैसे ही टोकरी की तरफ देखा तो उसे टोकरी कुछ अलग दिखी। पहले वह कोयला रखने के कारण अंदर और बाहर से काली और गंदी हो गई थी, पर अब अंदर और बाहर से एकदम साफ और सुंदर लग रही थी। दादाजी ने समझाया, यही होता है भगवत गीता पढ़ने से या मंत्र उच्चारण करने से, भले ही हमें समझ न आए, पर वह हमें अंदर और बाहर से यानी हमारे तन और मन को एकदम साफ कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ये सफाई चल रही होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस कदर अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बिना एहसास के यह टोकरी एकदम साफ हो गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ना केवल नाम जप, ना केवल मंत्र उच्चारण, अपितु कोई भी काम अगर हम नित्य रूप से करें तो उसका गहरा प्रभाव हमारे तन मन और चित्त पर अवश्य पड़ता है। और ये नियम अच्छी और बुरी बातों दोनों के लिए समान है, क्योंकि हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सही गलत या अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। इसलिए यह निर्णय हमारा है कि हमें क्या सीखना है। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। मैं आपके लिए और इसी तरीके की कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज आपके लिए लाया हूं एक सकारात्मक कहानी। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा ये जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वो कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वो सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, तो जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वो बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा, तुम्हारे कक्ष का कोना कोना बड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी, उसने समाधान पर ध्यान दिया, उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें और अगर आप भी कहानियां लिखते हैं तो आप अपनी मौलिक कहानियां हमें भेजें। अगर उस कहानी को हमने सही पाया तो हम उसको आवाज देके लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiovitasta@gmail.com या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती, मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बे इंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: महिला सशक्ति करण का सुंदर अरमा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड एक। इस कार्यक्रम में सहयोग दिया कृष्णा ने, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुतकर्ता नैना, कार्यक्रम का निर्देशन किया भारत सोपोरी ने।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट नैना। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस ताकत की जो हमारे समाज की रीढ़ है, यानी हमारी महिलाएं। आज शक्तिका के इस विशेष कार्यक्रम और पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसा माहौल मिलना चाहिए। आइए शो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता।

दोस्तों, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उनके अधिकारों पर जाता है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम अधिकारों से आगे बढ़कर उनकी बराबरी और उनकी भागीदारी की बात करें। आज की महिला किसी से पीछे नहीं है, वो हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे वो हमारे खेतों की मिट्टी हो, अस्पताल के वार्ड हो, स्कूलों के क्लासरूम्स या बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम। लेकिन क्या हमारा समाज और हमारा कार्यस्थल उन्हें वो सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दे पा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं? एक महिला जब घर से काम करने के लिए बाहर निकलती है तो वो अपने साथ ढेरों सपने लेकर निकलती है। कार्यस्थल पर सही वातावरण का मतलब सिर्फ एक अच्छी डेस्क या सैलरी नहीं है, इसका मतलब है सुरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति। आप बने रहे मेरे साथ कार्यक्रम शक्तिका में, सुनाती हूँ आपको एक प्रेरणा भरा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड एक, मेरे यानी नैना के साथ। आज भी महिलाओं के सामने कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं, जैसे काम और परिवार के बीच संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस, समाज का रूढ़िवादी नजरिया और सुरक्षा की चिंता। लेकिन हर समस्या का समाधान मुमकिन है। कुछ बिंदु आपके सामने रखती हूँ। पहला, काम के बदले पहचान और वेतन सिर्फ टैलेंट के दम पर मिलना चाहिए, जेंडर के आधार पर नहीं। दूसरा, सबसे बड़ा समाधान हमारे घरों से शुरू होता है। हमें अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा और बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की आजादी देनी होगी। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाएं। इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों समाज की गाड़ी के दो पहिए बनकर एक साथ चलें। जब तक दोनों पहिए मजबूत नहीं होंगे, समाज की ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आइए आज रेडियो वितस्ता FM 90.0 के माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास की महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देंगे, जहां वो बिना किसी डर के अपने पंख फैला सकें।

लेती हूँ इस कार्यक्रम को समापन की ओर। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से हमारे सुनने वालों की सोच में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आप कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। अब चाहेंगे आपसे आज्ञा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट नैना। छोड़े चली जाती हूँ आप सभी को एक मनमोहक गीत के साथ। मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड एक, जो नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सहयोग दिया कृष्णा ने, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुत किया नैना ने, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ।

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो। पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव। प्रस्तुत करेंगे भारत सुपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। कला एक प्रकार का कौशल है। कलाकार का कौशल उससे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प एवं तकनीक के अतिरिक्त कृति को आकर्षित बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। जो ये खोज करता होता है वो ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एवं एक अच्छा इंसान होता है। ये सारे शब्द आज के आमंत्रित मेहमान की शान में पड़े गए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा, जहां हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की और रंगमंच की। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज के मेहमान इन तीनों विधाओं में माहिर हैं और गौरव इस बात का है कि अनिल कुमार यादव जी मेरे शिष्य भी हैं। करते हैं स्वागत श्री अनिल यादव जी का, जो एक राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।
1: पहले तो मैं इस FM का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और आप मेरे गुरु जी हैं और मुझे अपने पे फक्र फील हो रहा है कि मैं अपने गुरु के सामने मैं इस परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये बातों का सिलसिला इस कार्यक्रम के दौरान हमारा चलता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को अपने अंदाज में दें।
1: पहले तो मैं सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। अपने बारे में मैं ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात में कहना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म है अम्बाला छावनी में ही हुआ है, लेकिन जो मेरा लालन पोषण अगर कहें तो यूपी, उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद में जो अयोध्या के पास है वहाँ पे हुआ। मेरा जो आरंभिक शिक्षा है 5वीं तक मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मैं अम्बाला आया, फिर यहाँ से मेरे जितने भी क्वालिफिकेशन है वो अम्बाला गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ हुई। उसके बाद आज मैं PhD स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैं फिल्म में PhD कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक है।
0: तो जो आप PhD कर रहे हैं तो ये फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में ही आप PhD कर रहे हैं?
1: ये सर मैंने, क्योंकि क्या है PhD का एक रूल है कि आपको पहले देखना होता है कि किस चीज़ पे रिसर्च हो रखी है। तो मैंने बहुत सारे 100-150 रिसर्च मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जिस पे रिसर्च नहीं हुई है उस पे करना चाहिए। एक है सिमियोटिक्स या मिजन सीन हम बोलते हैं, सिमियोटिक्स का पार्ट है जिसके अंदर साइन सिंबल के थ्रू हम फिल्म को प्रेजेंट करते हैं।
0: ठीक।
1: तो इस पे अभी तक इंडिया के अंदर PhD नहीं हुई है, अगर हुई है तो एक शोध के रूप में हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो विषय है वो सिमियोटिक्स रखूँ
0: जी।
1: तो सिमियोटिक्स में कई सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है, तो उनको लेकर मैं करूँगा। जैसे सर धुआं उठता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, आग लगी है तभी वो धुआं उठा है, तो इस तरह सिमियोटिक्स मैं यूज करूँगा PhD में।
0: हमें इस बात की भी खुशी है कि अम्बाला में हमें एक PhD यानी एक डॉक्टर जिसको कहते हैं, एक उपलब्धि हासिल होती है। और फिल्म मेकिंग में या फिल्म के साथ जुड़े हुए इन विषयों के साथ हमें एक एक्सपर्ट मिलेंगे तो अम्बाला के लिए ये एक खुशी की बात है, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे आपसे सीखेंगे। आपने अभी कहा कि आपकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में हुई है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कला का सृजन उसी समय से हुआ था?
1: जी सर, जब मैं छोटा था तभी से मेरा एक्टिंग का, डांस का बड़ा शौक रहा है। और वो शौक कैसे चढ़ा, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो जो डांस का और एक्टिंग का होता था मैं उसमें सबसे आगे होता था। तो उसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा कि क्या रहा। टीचर क्या कहते हैं कि ये बुक है, आप लो इसमें से अपने डायलॉग ढूंढ लो। हम हैंड खड़े करते थे, ये रोल मैं करूँगा, तो मैंने ले लिया। तो हम क्या करते सारे बच्चे कॉपी ले आते थे उस टाइम, 5 रुपए की मिलती थी, बैंग मैं लेकर आ गया। मैं कहा होंगे 10-12 डायलॉग्स, तो मैं कह रहा हूँ मैं पहले ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते एक पेज पे सिर्फ एक एक वर्ड का डायलॉग मिला, वो था आक्रमण,
0: बस इतना ही बोलना था।
1: यस, अभी और सुनो सर, फाइनल एंड प्रैक्टिस में अलग अलग आवाज में आक्रमण आक्रमण अलग अलग आवाज निकाल रहा था। जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन सामने अर्जुन था, तो मैं सेनापति था, तो मुझे बोलना था। अर्जुन ने पहले तीर लगा दी, चला दी, मुझे डायलॉग नहीं बोलने दिया।
0: अच्छा, जो आक्रमण के बाद तीर चलना था वो पहले ही चल गया, आपका डायलॉग उसमें दब गया।
1: दब गया। अब मैं कहूँ मरूं कि मैं बोलूं, तो मैंने कहा मरना ही सही रहेगा क्योंकि तीर लग चुकी है। तो ऐसा हुआ था। तो मैं बाद में उस लड़के को बोला, मैं कहा यार एक डायलॉग मैंने 2 महीने रटे, अच्छे से आवाज निकाल निकाल के करी, और तूने तीर पहले मार दी यार। तो कह रहा चल अगली बार तू बोल दियो।
0: चलिए, मतलब ये एक आपकी शुरुआत यहाँ से कला के प्रति रही है। तो उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ कि नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होने दिया?
1: नहीं, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ ज्यादा। फिर एक्साइटमेंट में करा, तो उसमें मैं हवलदार बनना था, तो हवलदार में थे डायलॉग्स थोड़े बहुत। अब क्या था उसमें, स्टार्टिंग में ढोल लेकर अनाउंसमेंट करना था कि सुनो सुनो आज ये होने वाला है। तो अब ढोल नहीं मिली, टीचर, मैंने कहा सर ढोल नहीं है, फाइनल चल रहा है सर स्टेज पे। कह रहे तू अपने पीछे ना हाथ मार मार के कह सुनो सुनो। मैंने कहा मन में कुछ था, अब बताता हूँ। मैं शुरू हो गया सुनो सुनो और पीट रहा हूँ मैं पीछे से, और बड़ा मजा आता था।
0: अनिल जी, आपने कहा कि जो आपका पहला डायलॉग था और वो आप उस समय नहीं बोल पाए क्योंकि तीर पहले ही चल गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो डायलॉग आज आप हमारे श्रोताओं के लिए बोलें, जिन आवाजों में आपने उसको तैयार किया था, आप एक बार उन आवाजों को दोहराएं ताकि एक दिल की तसल्ली हो जाए कि डायलॉग तो हमने बोल दिया।
1: हाँ जी सर, वो था आक्रमण। तो मैंने अलग अलग आवाज, मैंने कहा आक्रमण आक्रमण आक्रमण, तो इस तरह मैंने
0: इस तरीके की आपने तैयारी करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि आप यूपी के बाद जो आपकी बाकी की शिक्षा है वो अंबाला में हुई, तो अंबाला आगमन कैसे हुआ और अभिनेता बनने का ख्याल कब से आया?
1: यस सर, सर मैं 5th वहाँ कर चुका था, तो मैं यहाँ घूमने आया था। फादर मेरे यहाँ जॉब करते थे, तो मम्मा के साथ आ गया मैं, तो 1 महीने की छुट्टी थी, तो यहाँ पे रुका, तो यहाँ जो एनवायरमेंट था, बच्चे थे, उनके साथ घुल मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक स्कूल में गया, तो कह रहे 1 क्लास पीछे लेंगे। मैं इंटेलिजेंट था अपने टाइम में, मैंने कहा पीछे तो मैं जाऊँगा नहीं। फिर किसी ने अप्रोच करे, तो गवर्नमेंट स्कूल में 6 में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद ये अपना कबाड़ी बाजार में है, जो 12 बजे क्लास लगती थी, तो आराम से 12 बजे पहुँच जाते थे और 5-6 बजे छुट्टी होती थी। तो वहाँ पे भी जैसे डांस का प्रोग्राम होता था 12 बजे, तो वैसे ही। और सारे जो मेरे फ्रेंड थे यूपी के थे, 4-5 फ्रेंड थे, तो और अच्छा लगा। तो इस तरह वहाँ से हमें एक अच्छा सा वो मिल गया, माहौल मिल गया। तो फिर मैंने कहा गांव क्या करने जाना है। फिर थोड़ा सा ये भी रहा कि शहर जो है वो अपने आप में आपको
0: अच्छा, कुछ नई चीज़ें लेके आता है।
1: फिर उसके बाद स्कूल करने के बाद फिर मैं कॉलेज में एंट्री मेरी हुई, तो आपको पता है कॉलेज में जाना मतलब कि आप एकदम वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, नए नए कपड़े सेंट सुंट लगा के, वो एक आता था बहुत महकता था वो, मैंने छिड़का घड़ी पे भी पड़ गया था। मेरे को इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, मैं घड़ी फेंक दिया था मैंने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो टीचर पूछते हैं कि आपका मतलब आप क्या बनना चाहते हो। तो सारे बच्चे जी हम डॉक्टर डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट करना चाहते हैं, हम
0: इंजीनियर बनना चाहते हैं।
1: इंजीनियर तो हमारे मास कम्युनिकेशन में नहीं होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वहाँ पे कोई कह रहा हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में जाना चाहते हैं, इस तरह का। मेरी बारी आई, कह रहे हाँ नीलम तुम क्या बनोगे? मैं कहा मैं एक्टर बनूंगा। तो वहाँ पे 35-40 बच्चे थे, वो हंसने लगे मुझे देख के।
0: ठीक।
1: तो मैंने सबको देखा, तो सर ने कहा चुप हो जाओ ऐसे नहीं हंसते। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस हुई, सब बोलते थे, तो मेरे को टीचर ने, मेरे रविशंकर नाम है गुरुजी का, उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडियो में ट्राई करो, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा है दम। मैंने कहा सर मुझे एक्टर बनना है, ना मुझे टीवी में जाना है ना रेडियो में जाना, मुझे हीरो बनना है। इसलिए तो मैंने किसी से पूछा था, कह रहे ये सब्जेक्ट पढ़, ये फिल्म से रिलेटेड है, यहाँ डांस वांस भी होता है।
0: ठीक है,
1: तो वहाँ से फिर सर ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ प्रेस डे मनाते हैं, तो वहाँ पे खुद लिखी हमने स्क्रिप्ट लिखी, वो था उसका फर्स्ट हमने करा था औरत की दुश्मन औरत, तो उसके हमने स्क्रिप्ट लिखी, उस पर एक्टिंग भी करी। मैं फादर का रोल मैंने करा, तो मैं जिम जाता था ना, तो टीचर कहे तू कहाँ से लगता है फादर, कह रहे ऐसे कौन फादर चलता है एकदम चौड़ा होके। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो लास्ट में जब मैंने बाल वाल कटिंग कराई, गमछा वमछा डाला, थोड़ा झुक के खुले खुले ड्रेस से डाला, तो सर ने अच्छा वो करा था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, डांस करना शुरू करा। और उस टाइम में सर नाइट ड्यूटी भी करता था।
0: अच्छा,
1: नाइट ड्यूटी करता था तो यहाँ भी जाना होता है। और सुबह मैं आर्मी स्कूल में एज अ पार्ट टाइम मैं था डांस टीचर, कोरियोग्राफी करता था मैं, वहाँ भी जाना होता था। इसी दौरान जब एक बार घूमते घूमते पता लगा आपके पास, जब हम आए कि वर्कशॉप लग रही है।
0: इससे पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने बात कही उसी में से एक सवाल मेरे मन में आया, वो ये है कि संघर्ष, जब हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं, आप यंग थे, आप कॉलेज गए, आप यंग अभी भी हैं, बट कॉलेज में ऑब्वियसली हम हमारी जिंदगी शुरू होती है। तो क्या आपका कॉलेज को एजुकेशन था?
1: यस।
0: ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें घर के प्रति और या कोई फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो क्या इस वजह से आपको बाकी काम भी करने पड़ते हैं? आज जैसे आपने कहा कि नई ड्यूटी आप कर रहे थे,
1: फैमिली की तरफ से तो कुछ नहीं था, मुझे लगा कि फादर कितनी इनकम नहीं थी,
0: ठीक है,
1: तो मुझे लगा कि जो शौक है अपने, अगर मैं कमाता हूँ चाहे 10 कमाऊं 20 कमाऊं, तो मैं अपने ऊपर
0: उसी से पूरा करूं,
1: उसी से पूरा करूं
0: जी।
1: तो वो तो मना करते थे, तू नाइट ड्यूटी क्यों कर रहा है, मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा दिल नहीं मानता था। मैं क्या क्या करूंगा यहाँ, फिर इधर उधर घूमूंगा। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई भी मैं रात को कर लेता था साथ में, जब मैं कॉलेज में था ये चीजें तो थी, लेकिन कहते हैं कि गुरु बिना कोई गति नहीं है
0: जी।
1: ये तो देखो सर, एक दोस्त है, दूसरे दोस्त कहता है यार तू बहुत अच्छा डांस करता है, एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। हर कोई अगर आपको जो पसंद करता है वो तो कहेगा, हर माँ के लिए
0: एक बच्चा तो लाडला ही है,
1: काला पीला वो लाडला ही होता है, सुंदर होता है, टीका लगा देते हैं तो इसी तरह। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, और उस टाइम सर ज्यादा दिन की तो बात है नहीं, 2007-08 की बात है, तो इस टाइम जो एक खुमार चला फिल्मों का, तो उसमें ये था अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो मैं था नहीं। उसके साथ ही मेरा अच्छा डांस आना चाहिए और आपको
0: अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए।
1: मैंने कहा शक्ल तो चलो कोई नहीं, मेकअप वेकअप करके एक दो फोटो खिंचाए, उसमें तो अच्छा लग रहा था। मैं कहा चलो वो तो मैं कर लूंगा,
0: मैनेज कर लेंगे।
1: तो कॉलेज में कई बार ऑडिशन हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए, आते थे कई, आए थे उन्होंने, नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब अपनी हाँ, जगह गुरु गुरु
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: बट जब वो बोलते थे कि इस तरह करो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता था। मैंने कहा ये तो ऐसे है कि आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला के आप एक्टिंग नहीं दिखा सकते, बट कहीं ना कहीं उनको चाहिए होगा उस वाले
0: शायद किरदार की जरूरत उस समय वो,
1: लेकिन मेरे को ये नहीं था। तो मुझे लगा कि यार नेचुरल एक्टिंग, आप आराम से प्यार से बोलो जैसे हम रियल में बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप दे लो, आप सिखाने आए हो, आप पहले से चाहते हो कि सिखा हुआ बच्चा आपके पास आए, तो फिर आप सिखाओगे क्या। तो फिर इसी तरह मुझे पता लगा कि
0: यहाँ भी मैं आपको रोक लेता हूँ अभी हम आपकी जो ये जर्नी है हमें जिज्ञासा है इसके बारे में सुनो, और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने के लिए कि आगे जब आपको लगा कि अगर मुझे कोई भी काम करना है उसके लिए मुझे पहले सीखना जरूरी है, फिर आपने क्या किया है। बट मैं चाहता हूँ आपसे ये पूछूं पहले, तो क्या संगीत की आपने अभी बात की, डांस की आपने बात की, तो क्या संगीत के साथ आप जुड़े हैं, क्या संगीत आप सुनते हैं?
1: सभी को पता है कि संगीत के बिना एक तरफ से जीवन व्यर्थ। अगर हम भी कहीं बैठे होते हैं सुकून के लिए हम म्यूजिक सुन लेते हैं, रिलैक्स, आजकल एक थेरेपी हो गई है कि आप म्यूजिक पढ़ो सुनो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। संगीत तो एक तो कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि संगीत ना सुनो तो नींद नहीं आती थी मुझे। और फिल्म लाइन में तो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल है
0: जी।
1: तो म्यूजिक तो एक अहम है, और इस तरह जो हमारी जिंदगी चल रही है तो उसमें अगर म्यूजिक ना हो तो वो बेरंग हो जाएगी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाना आपका जो पसंदीदा हो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मन में इस समय आ रहा है?
1: मैं सर लाइफ यानी जिंदगी की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: तो मैं ज्यादातर इस एक गाना है जो मैं गुनगुनाया करता हूँ, और जो उतार चढ़ाव है उसके लिए मुझे लगता है ये जो सॉन्ग है ये उस पे फिट बैठेगा। वो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: अनिल जी, अगर अभिनय की ओर दिलचस्पी थी तो डांस भी क्या मन को भाता था?
1: मुझे जो लगता है कि जो डांस करना, उस सॉन्ग के ऊपर एक्सप्रेशन देना, वहीं से तो एक एक्टिंग की शुरुआत हुई। कि मुझे लगा कि देखो, डांस में तो हम एक्सप्रेशन इधर उधर मुंह बना लेते हैं, लेकिन रियल जब आप बोलते हो, उसके साथ जो एक्सप्रेशन आना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: तो क्या हम ये मान के चलें कि जब एक एक्टर घर से बाहर निकलता है तो जितने लोग आसपास होते हैं तो क्या उनकी नजर उनके एक्सप्रेशंस पे रहती है, ताकि वो ये समझ जाए कि किस किरदार की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए?
1: यस सर, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से, हाव भाव से पता लग जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, या जो बोल रहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा
0: ऐसा हो सकता है?
1: है।
0: ये बात
1: ऐसा
0: तो
1: हो
0: बहुत आपने बहुत
1: सकता
0: आपने पते की बताई, यानी कि अगर हमने गुस्सा करना है तो हम हंस के गुस्सा नहीं कर सकते, कि वो दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती है। तो गुस्सा करना है तो हमें चेहरे पे ऐसे भाव लाने पड़ेंगे ताकि वो गुस्सा दिखे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभिनय जुनून से, दृढ़ता से, पक्के मन से होता है। क्या ऐसे भी समय आया कि एक्टिंग आप करना चाहते थे पर समय अनुकूल नहीं था?
1: यस सर।

0: अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में था, एक तो नाइट ड्यूटी किया करता था मैं, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी होती थी। वहां रात भर जागना होता था, आप सो नहीं सकते थे। और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासें होती थी
1: आपका
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: की।
1: जी
0: अब उसके बाद 5 से 6 आपको कंप्यूटर सेंटर भी जाना है।
1: जी
0: तो अब जो 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है, उसके अंदर आपको खाना भी है,
1: और आराम भी करना
0: आराम भी करना है।
1: है।
0: तो मैं सोचता था आराम तो पूरी जिंदगी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो एक एज है उसमें जितना ज्यादा सीखो उतना कम है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम हमारा साथ दे रहा होता है कि भाई अभी पावर है, तू चाहे ना भी सो तो कोई बात नहीं है, संडे तो है, उस दिन सो लियो किसी दिन। तो जब मैं कॉलेज में था, आपको मैं बताना चाहूंगा सर, कि जब हम कॉलेज में थे, एक गुरु की खोज मैं कर रहा था। तब मेरे फ्रेंड ने बताया कि कहीं वर्कशॉप है, उसका नाम प्रीतम है, हम साथ में रहते थे।
1: जी
0: तो मैंने कहा चल चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं कहा देख गुरु तो चाहिए, चाहे जैसे करके। हम मुंबई तो हम जा नहीं सकते, एक तो इतनी खतरनाक कहानियां हमने सुनी होती है मुंबई के बारे में, तो सोचे नहीं। तो हमने कहा क्यों ना अंबाले में देखे। तो हम एड्रेस हमें मिल गया था, हम घूमते हुए निकले, ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ, कोने पे। जब हम अपना गांधी मार्केट के उस लास्ट में इंदिरा पार्क जो पार्क है वहां पहुंचे, तो देखा कि ऊपर है, तो हम ऊपर गए। तो मुझे लगा कि हम दो थे, बाकी आने वाले थे, कोई आया नहीं था। तो उस टाइम आपसे मुलाकात हुई सर। तो अब मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी नहीं उस टाइम पता होगा। तो ये था, रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा करना पड़ेगा, तो उसके पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चल दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। फिर मैंने उससे पैसे लिए, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और 10 दिन हमने जो वर्कशॉप है, किस तरह बोलते हैं, आपने सर बताया था, मैं अभी जो पहले मैंने जो बातें बोली है वो आपसे सुन के ही बोली थी। ये तो आप, मैंने अपनी तरफ जब आपने तारीफ कर दी कि आपने बड़ी बात बोल दी, जब मैं वर्कशॉप ले रहा था तो आपने ही बताया था। एक आपने कहा कि अच्छा, एक जिसका पैर खराब होगा वो कैसे चलेगा, हमने सबने चल के दिखा दिया। तो कहा कि कैसे, ये आपने कैसे करा, हमने कहा जी फिल्मों में देखा। सबने कहा फिल्मों से देखा है, नॉर्मल यही बोला कि फिल्मों से देखा। फिर आपने बताया कि अगर मान लो एक सब्जी वाला है, अगर उसका रोल करना हो तो मैंने बोला फिल्मों में देख लेंगे। फिर आपने बताया कि जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से आपको कई नए नए करेक्टर मिल जाएंगे। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जहां भी हूं, मैं कभी भी फिल्मों में किसी भी करेक्टर को मैं कैच नहीं करता हूं। मैं बस में जाता हूं या कहीं भी जा रहा होता हूं, मैं लोगों को चेहरे देखता हूं और मैं अपने में खुश रहता हूं, हंसता रहता हूं। मुझे कई करेक्टर रियल लाइफ से मिलते हैं, तो वहां से मैंने ये आप जब सीखा, तो मैं आपको, आप भी थे वहां पे, आप सिखा रहे थे, तो जो किस्सा मैं वो श्रोता जो है मैं उनको बताना चाहूंगा। 10 दिन का था, बहुत अच्छा लगा। हमारे लास्ट जब हमें करना था, इसको सुभाष पार्क में इसका होना था, तो एक लड़की का किरदार भी था इसके अंदर। मैं बना हुआ था सब्जी वाला,
1: मुझे अब याद आ रहा है।
0: सब्जी वाला मैं बना हुआ था, तो हम कर रहे थे अच्छे से, एक्टिंग हो गई। अब ये था जो लड़की वाला पोर्शन था वो खाली जा रहा था,
1: जी
0: तो हम सारे कर रहे थे। तो 1-2 दिन पहले पता लगा उसकी थोड़ी शायद तबीयत खराब थी, वो आ नहीं पाई। तो कह रहे अब इसका कौन करेगा, तो मुझे वो करेक्टर मुझे दे दिया गया। तो मैंने, अब क्या था उसमें, आवाज
1: थोड़ी सी चेंज
0: चेंज
1: मॉडल करने
0: करनी थी, और चुन्नी को ओढ़ना था, घूंघट करना था। तो वो करेक्टर फिर मैंने करा। उसमें रोने का भी था, चूड़िया तोड़ के उसके छाती के ऊपर
1: जी
0: मारना, मैंने तेजी से मार दिया था उसके, कह रहा धीरे मारो। तो ये हो गया था। फिर उसके बाद जब फाइनल जब हुआ वहां पे, और ये बहुत अच्छा था सर, आपने देखो कई बार क्या होता है, बच्चे को जब हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, वो घबरा जाता है।
1: ठीक।
0: तो जब वहां पे था ऑडियंस को इकट्ठा करना, अब
1: पार्क में जो चलते हुए लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना, बुलाना।
0: हाँ
1: जी
0: अब कह रहा है कि भाई चलो अब इनको बुलाओ, अब सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। आपने कहा अनिल, मैं भी देखा, मैं कहा ये क्या, मैं कहा बोलूं क्या। फिर मुझे वो जो बताया आपको कि बचपन में जो सिपाही था वो ढोल बजाते बजाते, मेरे को याद तो वही आया था, तो हमारे पास वो बजाने वाला था, तो मैंने डफ
1: जी,
0: तो डफ लेकर फिर हमने शुरू करा सुनो सुनो। फिर वहां पे जो
1: काफी सारे लोग आए थे और हमारा वो पहला वे थिएटर ग्रुप का वो पहला एक्सपीरियंस था कि जो हमने कहीं स्टेज के बाहर किसी जगह किया था, जहां हमने लोगों को इकट्ठा किया। और उसके बाद मुझे याद है उस नाटक का नाम, छोटे नाटक का नाम था बेल नींबू, और इसको डायरेक्ट किया था अतुल वशिष्ठ ने, जो हमारे वीटी जी के मेंबर उस समय थे।
0: yes,
1: जिंदगी बहुत आगे की ओर बढ़ती है। जितने भी लोग थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े, बहुत सारे लोग तो आगे की ओर बढ़े, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है। पर हम आपकी बात पे आते हैं, तो आपने ये कहा कि जो एक अभिनेता है उसको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है जब वो घर से निकलता है, तो किस व्यक्ति की क्या हावभाव है वही आप किसी किरदार में आप डाल सकते हैं।
0: yes,
1: तो वे थिएटर ग्रुप के साथ जो आपके जो जर्नी शुरू हुई थी, क्या आपने इससे पहले भी यहाँ अंबाला में किसी ग्रुप के साथ काम किया था या ऐसे किसी नाटक में परफॉर्म किया था?
0: आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में, सर गुरु तो कोई था नहीं, बस अपने जिधर लिखना है लिख लो, बोलना है बोल लो, कैसे बोलना है सिंपल चल रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए एक गुरु की खोज में लगा हुआ था कि कोई मिले, कईयों से मिला था मैं, तो मतलब मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि यार ना कहीं कमी है। तो फिर जब मैं आपका वर्कशॉप था वो लगाया, और सबसे बड़ी बात मैं उसको अच्छा डे बोलूँगा अपनी लाइफ का कि एक साथ मैंने 3 किरदार निभाए थे, और मैं शायद मुझे लगता है कि ऐसा कम मौका मिलता है लोगों को एक अपोजिट करेक्टर, एक फीमेल आर्टिस्ट भी, और वो भी 2 दिन पहले उसके डायलॉग्स याद करके उसको प्ले करना, सब्जी वाले का रोल प्ले करना, और ऑन द स्पॉट एक अपना लोगों को इकट्ठा करना, मुनादी
1: अनाउंसमेंट
0: का। तो ये चीजें सर बहुत अच्छा लगा, उस चीज को फॉलो करते हुए आज अच्छा लगता है जब हम सामने वालों को बताते हैं, उसे भी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करो। कई बार क्या होता है ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उन्हें फिल्मों के कई बार बिजी भी रहते हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप ये करेक्टर लो और आप अच्छे से काम कर सकते हैं।
1: देखिए अनिल जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि वे थिएटर ग्रुप के साथ आपने वो समय हमारे साथ बिताया, एक ग्रुप कोई सा भी हो वो तभी चलता है जब वो निरंतर काम करता है, और ऐसे ही निरंतर काम अनिल जी ने भी किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वे थिएटर ग्रुप भी बहुत खुश होता है आपके काम से, और आज आप अच्छे फिल्मकार हैं, आपने कई सारे आपने फिल्में बनाई हैं, हम उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी वे थिएटर ग्रुप के माध्यम से अंबाला कैंट को ये पहला FM स्टेशन मिला है, और आज भी आप ये मान के चलें कि आप वे थिएटर ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं और आज इसका हिस्सा बने हैं। एक हम और गाना यहाँ पर लेते हैं अनिल जी की पसंद का। श्रोताओं आप सुनिए ये गाना, और हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर रूबरू होंगे।

0: अनिल जी, मुझे याद है एक बार आपके कॉलेज में आया था। आपके सहयोगियों ने आपने बहुत मान सम्मान दिया था। आप मुझे अपने कॉलेज के रिकॉर्डिंग रूम में भी ले गए थे। आज बारी हमारी आई है आपको अपने रिकॉर्डिंग रूम में आमंत्रित करने का। कैसा लग रहा है?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश था, तो मतलब मैं चाह रहा था कि अपने गुरुजी को मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि सर मैंने ये चीज़ मंगवाया बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जब सर मेरे पास आए थे तो मैं एस ए जैन कॉलेज अम्बाला सिटी, वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कार्य कर रहा था। मास कम्युनिकेशन जो मेरा डिपार्टमेंट था उसमें मैं बच्चों को, मेरा ज़्यादातर फोकस होता है प्रैक्टिकल में। मैं 5 साल एस ए जैन कॉलेज में मैंने वहाँ सर्विस दी है। मैं वहाँ कैसे पहुँचा मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा
0: जी जी
1: कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, मैं टीचिंग में कैसे चला गया। मेरे एक सर हैं अतुल यादव सर, हिस्ट्री वाले टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि बेटा तुझे कितनी फिल्में मिल जाती हैं, मैंने और कब कब मिलती है। मैंने कहा साल में एक आधे तो मिल ही जाती है। कह रहे पैसे मिलते हैं, मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर फैमिली कैसे चलाओगे। मैं सोचा कि ये बात तो सही है, तो उन्होंने कहा बेटा साइड बाय साइड इनकम का सोर्स रख जिससे तेरा परिवार भी चले, ये शौक तो चलते रहेंगे।
0: ठीक है,
1: तो उनकी बात मान के फिर मैंने उस टाइम प्रिंसिपल थे प्रदीप स्नेही सर, उनके पास मैं गया, इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा। 5 साल काम करने के बाद कोरोना के बाद फिर मैं वहाँ, ये अकाल डिग्री कॉलेज है संगरूर में, वहाँ पे मैंने 1 साल सेवा दी। उसके बाद जेएमएन कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। जब यहाँ पढ़ा रहा था तो मेरी पीएचडी में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैं कुरुक्षेत्रा चला गया जहाँ अब मेरा गाइड मुझे अलॉट होंगे जिनके अंडर मैं पीएचडी।
0: ये जो जिंदगी का सफर है इसके लिए जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर मरहले पे हम कुछ नया सीखते हैं और तभी जाके हम जिंदगी के साथ रूबरू होते हैं। आगे चलते हैं, आपकी उपलब्धियां तो अब बहुत हुई हैं। श्रोताओं को आप खुद ही विस्तार में बताएं कि आपने फिल्म बनाने में या आपने जो बहुत सारे भजन हिंदी और पंजाबी में या हरियाणवी में आपने तैयार किए हैं या कुछ और आपने किया है, तो कृपया आप विस्तार में बताएं।
1: जब इस लाइन में आया तो पहले जितने भी शॉर्ट्स फिल्में हैं, मैं पहले बताना चाहूँगा कि 30 से 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्में मैं कर चुका हूँ। 2 फीचर फिल्म है जो भोजपुरी में थी वो हाफ हो गई थी, बजट की वजह से वो रोकनी पड़ी है। उसके बाद भोजपुरी कम से कम 60-70 गाने हैं जिसमें मैं एज एक्टर मैंने काम करा हुआ है। उसके बाद पंजाबी और हरियाणवी डिवोशनल सॉन्ग, उसमें भी एज अ मॉडल मैंने वर्क करा हुआ है, और साथ में एडिटिंग भी मैंने करा जो सोनी टेक और कई अच्छे अच्छे चैनल्स जो है उन्होंने सेलेक्ट करा था। तो इस तरह काफ़ी सारा, और अभी मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे टाइम लाइन पे है, हम उस पर काम करेंगे।
0: यहाँ पर मुझे आपने एक बात कही कि आपने भोजपुरी में भी बहुत सारे गाने किए हैं और तैयार किए हैं, तो भोजपुरी क्या वो भाषा है जो आपके बचपन के साथ जुड़ी है, जब आपने, जहाँ आपका जन्म हुआ, और क्या वहाँ पर ये बोली जाती है या आपके घर में भी भोजपुरी या अवधी बोली जाती है?
1: सर अभी यहाँ पे जैसे हम दूर रहते हैं तो लोगों को ज़्यादातर जो फिल्में सुनते हैं देखते हैं वो भोजपुरी उनको लगता है। यूपी में अवधी बोली जाती है।
0: अच्छा,
1: भोजपुरी अलग एक बिहार की एक भाषा है जो बोली जाती है। वहाँ फिल्म जो है वो ज़्यादा उठ चुकी है, इसलिए भोजपुरी सबके ज़ुबान पे होती है। कोई यूपी से भी आता है तो उसे भी भोजपुर का बोलते हैं, लेकिन जो अवधी है बॉलीवुड में भी यूज़ की जाती है। ये मैं उस शहर से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाती है। लोग भोजपुरी बोल देते हैं लेकिन अवधि होती
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, वो अवधि होती है, वो भोजपुरी नहीं होती है।
1: नहीं होती है।
0: तो आपने इतने सारे, आपने कहा कि गाने आपने किए हैं, कुछ फिल्म्स भी है जो बाद में तैयार कंप्लीट नहीं हुई, तो क्यों ना हम आपसे भोजपुरी में या अवधि में, जिसको हम भोजपुरी कहते हैं असल में वो अवधि है, तो कुछ आप हमें सुनाइए और हमारी श्रोताओं को भी सुनाइए।
1: मैं 2 लाइनें गुनगुना दूंगा।
0: जी जी।
1: उसको थोड़ा अवधि वाले भी अब क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल के चक्कर में वो थोड़ा भोजपुरी टच मार देते हैं। मैं कहूँगा ये मेरी एल्बम का भी गाना था और ये गाना मैंने लिखा था उस टाइम था, ये था टाइटल सॉन्ग था भौजी तोहार बहिनिया। तो उस टाइम क्या था, थोड़ा शहर से लोग गांव जाते थे, लड़कियां भी जाती थी ना, तो जींस विंस का बड़ा वो रहा है। तो मैंने लिख दिया था और ये लिखा था मैं जब छोटा था तब, लेकिन मौका मिला था बहुत टाइम, तो मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा। ये था अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, जब चला तयू रोड पे, जब चला तयू रोड पे छुरिया चल जाइल हो, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली। ये सब
0: बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे से पेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये होता है कलाकार जो किसी भी जगह पर कहीं पर भी अपनी प्रस्तुति देता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक ये थोड़ा सा हमारे जो इंटरव्यू है उसमें एक ये थोड़ा सा चेंज आया। आपसे इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल और करना चाहूंगा, आपकी फिल्में ज्यादातर सामाजिक विषयों पर बनी है, ऐसा क्यों?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ज़्यादातर जैसे यूपी से बिलोंग करा और मैं स्टेशन पे रहा तो मैंने लोगों को देखा। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। अब ये तीनों मेरे पास नहीं था,
0: ठीक है,
1: पैसे भी नहीं थे और मन से हम सेवा कभी कर नहीं सकते, उसके लिए शरीर का यूज होगा। अब उस टाइम मेरे पास समय नहीं था कि मैं टाइम दे सकूं, तो मेरा ख्याल आया कि जो वीडियो है या फिल्म है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उन लोगों तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो आपको नहीं जानते या आप उनसे कभी मिले नहीं हो। तो फिल्म जो एक, जैसे मैंने कहा, एक माध्यम है, तो मैंने सोचा कि जो मैं अगर पैसों से या किसी की हेल्प नहीं कर सकता तो मैं क्या छोटी छोटी फिल्में बना के मैं लोगों को जागरूक करके उनको किसी नुकसान से बचा के या किसी चीज़ का क्या नुकसान है, इन चीज़ों को लेकर मैं फिल्में बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं फिल्मों के जरिए मैं एक समाज सेवा कर सकूँ, इसलिए मेरे जितने भी फिल्में हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कई बार कोई मुझे यह ना कह दे अच्छा ये अनिल यादव वो है जो सामाजिक फिल्में बनाता है।
0: जी जी।
1: तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। सर
0: देखिए, समाज के अंदर रह के हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से अपना योगदान देता है। आपने बहुत ही सही तरीका ये चुना कि अगर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है फिल्म या म्यूजिक के द्वारा आप तक उस तक पहुंचते हैं, और ये चीज जो आपने सोची और ये काम कर रही है, आपके फिल्में हम भी देखते हैं। जब आपकी कोई भी फिल्म आती है तो हम अपना समय निकाल के उसको देखते हैं, हमें पता है कि उसमें कोई एक सामाजिक सरोकार होगा, उसमें कोई शिक्षा होगी जो लोगों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही मुझे याद आ रही है एक फिल्म आपने स्नेह बनाई, और उस स्नेह में भी आप लोगों ने, और जो उसके निर्माता सुभाष बंसल जी हैं, और आप लोगों ने एक ऐसा मुद्दा उसमें लिया जो कैंसर के ऊपर था, और आप लोगों ने लोगों को ये बताना जरूरी उसमें समझा, और आपने बखूबी उसमें बताया कि कैंसर की लड़ाई के लिए हमें पीछे कभी रहना नहीं चाहिए और आखिरी दम तक हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। हमने एक वेस्ट थिएटर ग्रुप के ओर से एक नुक्कड़ नाटक अम्बाला में किया था जिसमें हमने कैंसर के लिए लोगों को जागरूक किया था, तो वो फिल्म हमें बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने आपको उसमें सराहा भी। तो ये आपका जो सोचना है कि शाबाशी देता हूँ, आपने ये सोचा कि अगर हमने एक व्यक्ति तक पहुंचना है तो फिल्म के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। अब आप एक फिल्म्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इस नाम से अब आपको जाना जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा और श्रोताओं को भी हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है।
1: सर जो द एके फिल्म प्रोडक्शन है ये बेसिकली मैंने इसलिए खोला कि ताकि कुछ जिनको नीड है जो इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हम शूट करते हैं हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने ये फर्म को रजिस्टर करवाया। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं सारी फिल्में मैं इस पे डाल देता हूँ, फ्री है, कोई मैं कहीं बेचता भी नहीं हूँ। मैं अभी जैसे फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड होती है, उसके ऊपर बनाया था, जैसे आपने बताया कैंसर के ऊपर बनाया, एक बायोपिक गो रवि गो बनाया जिसमें सारी जो डबिंग हुई है यहाँ पे भी हुई है, आपने एक कीमती वक्त दिया था हमें। इसी तरह एडिक्शन पे हमने काम करा हुआ है, नशे के ऊपर काम करा, रोड सेफ्टी, इसी तरह बहुत सारी है। मैं जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप फिल्मों को एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो देखते हो, साथ में जो उसका मैसेज होता है उसको जरूर देखें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर, जो आपने सवाल पूछा कि आने वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मैं सुनने वाले दर्शक को बताना चाहूंगा कि जो टाइटल है वो एडिक्शन है। जी हाँ, एडिक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, नशा, लेकिन एडिक्शन नशा ही नहीं, आज एक जो सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, मैं मोबाइल फोन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसे लिख चुका हूँ मैं, सभी को बहुत अच्छी लगी है, मैं इस पर जल्द काम करने वाला हूँ और करेक्टर भी सर्च कर रहा हूँ, जिसमें गुरु जी को इंस्पेक्टर का रोल मैं दे रहा हूँ, अहम रोल, क्योंकि इंस्पेक्टर को गलत नजरिए से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो अच्छा, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बड़े तो चलो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होता है वो लगा तो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उसका वो मिस यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह उससे एडिक्ट होते हैं, ये छोटी सी स्टोरी है। तो मैं चाहूँगा कि जब बन जाएगी तो हमारे गुरुजी उसके बारे में बताएंगे, तो आप सर सभी उसे जरूर देखें।
0: आपने सही कहा कि कोई भी सुविधा हमें मिलती है उसका सदुपयोग भी किया जाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है, और मोबाइल खास करके इस समय हम सब के लिए एक परेशानी का बाइस बना है। इवन जो बड़े लोग हैं, अगर घर में कोई बात सीरियस चल रही होती है और बीच में मैसेज का टोन बजता है तो हम मोबाइल उठा के देखते हैं कि वो मैसेज किसका है, तो जो सीरियस बात चल रही होती है उसमें भी विघ्न पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये सबको छुए और ये सबको एक मैसेज अच्छी तरह से दे पाए। हम मोबाइल को जरूर यूज करें पर एक लिमिट तक यूज करें, ताकि ये हमारे लिए कल को कोई परेशानी का बायस ना बने। अनिल जी एक्टर है, राइटर है, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है जो अभी करना बाकी है?
1: एक सपना है सर, वो रह गया।
0: जी बताइए उस सपने के बारे में। और
1: थोड़ा गला खराब हो गया है, कोई बात, सुनने वालों के लिए माफी चाहूंगा। मेरा सपना सर ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं जहां बच्चे सीखना चाहते हैं, जिन पे पैसे नहीं हैं,
0: जी,
1: बस वो शिद्दत के साथ वो सीखें, जैसे फिल्म बनाना।
0: जी,
1: और वैसे मैं कहूँ कि मैं मुंबई को अंबाला में लाना चाहता हूँ, ये मेरा एक सपना है सर।
0: बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुंबई जाने के बजाय अगर हम घर बैठ के ये काम करें तो सबसे अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हमने 2 साल पहले अंबाला में ही एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना जिसमें हम लोगों ने काम किया, और वो अंबाला में ही शूट हुआ और पूरे हमारे देश में वो दूरदर्शन नेशनल पर 2 बार आज तक टेलीकास्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम मुंबई जाते भी हैं तो मेरी राय ये है कि अच्छी तरह से तैयार होके अगला कदम मुंबई के लिए आप उठाएं, और कल को ऐसा ना हो कि मुंबई जाके आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो पीछे मुड़ के आना आपके लिए मुश्किल हो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और एक पर्सनल सवाल अनिल जी से, काम और परिवार का संतुलन आप कैसे बनाते हैं?
1: सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अगर आपको सपने सच करने हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को हम कहीं ना कहीं उनको मैनेज करते हैं, मैनेज मतलब कि हम उनसे सलाह लेते हैं कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है, आप हमारा साथ उसमें दो। तो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे ब्रदर है, मेरी मदर है, ये हमेशा मेरा साथ देते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ तो ये सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है।
0: ये आपने एकदम सही कहा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जब तक परिवार का साथ ना हो तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं।
1: सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सुनने वाले जो श्रोता हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि बीटीसी जो ग्रुप थिएटर ग्रुप है मैं इसके साथ आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा, और साथ में जो वितस्ता जो रेडियो है FM मैं इसके साथ भी जुड़ा हूँ और मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा, और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं सर से डिस्कस भी करता रहता हूँ और मुझे अच्छे गाइड भी करते हैं सर।
0: अनिल जी आपका ये आपका बड़प्पन है कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उसमें अगर आप राय लेते हैं, हमें राय तो ज़रूर सबसे लेनी चाहिए पर करना वही होता है कि जो हमारे मन में है, पर उस राय लेने से कुछ न कुछ रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है। रेडियो वितस्ता और वह थिएटर ग्रुप हमेशा द AK फिल्म्स के साथ है, और मुझे याद है आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपने उसकी शुरुआत मेरे जीवन के ऊपर आपने इंटरव्यू किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप आए और हम मैं भी अपने जीवन के बारे में और जो मेरी जीवन यात्रा थी उसके बारे में कह सका। इस प्रोग्राम का अब समय समाप्त होने जा रहा है। अंत में मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप FM 90.0 MHz के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: मैं अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले और जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं और जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने सुनने वालों को मैसेज क्या, मैं एक राय, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करना हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो। अगर वो काम नहीं होता है तो कभी भी उदास नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, उस पे और मेहनत करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आप सीखोगे। सीखने से बंदा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे अगर आपको कोई ढकेलता है आप उसे हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे रेडियो वितस्ता का एक पंच लाइन है, हम सफ़र जिंदगी का, इसी तरह आपकी जो जिंदगी है उसको हंसी खुशी हंसते गाते गुजारते रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, आप आज आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें कही, और मुझे आशा है कि अंबाला के सभी लोगों तक हम ये बात जब रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz के माध्यम से पहुंचाएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी भी यही कोशिश है कि अंबाला के जितने भी लोग हैं वो एक एक करके हम उनको यहाँ स्टूडियो में बुलाएंगे, उनकी हम बात रिकॉर्ड करेंगे और सभी अंबाला वासियों तक उस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट का पहला FM स्टेशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो।
1: जिंदगी वक्त के धारों पे बहा करती है, आज किसकी
0: कल उसकी,
1: आज किसकी है।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय।

0: भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
1: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: सत्तावन की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
1: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
0: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया में दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमें थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाएं साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: दिल की गहराइयों से जो आवाज आती है वो हर लफ्ज में एक कहानी सुनाती है। आपके एहसास, आपकी हर बात हम शुरू में पिरो कर लाते हैं आज। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। आज के इस खूबसूरत सफर में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपुरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज के इस सफर में हैं
1: रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अन्नू।
0: और दोस्तों, आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं वो प्रोग्राम जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है।
1: शुक्रिया भारत जी। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ना, आपकी फरमाइश, ये नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि ये बस एक प्रोग्राम है जहां आप गाने की फरमाइश भेजते हैं और हम वो गाना बजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो ये उससे कहीं बढ़कर है। यहाँ जो फरमाइश आती है उसके पीछे एक दिल होता है, एक कहानी होती है और एक एहसास होता है। हम बस उस गाने को नहीं चुनते, हम उस एहसास को महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अनु। दोस्तों, ये प्रोग्राम असल में आपकी खुशियों का आईना है। जब आप हमें लिखते हैं, अपनी फरमाइश भेजते हैं, तो असल में आप हमें अपने उन लम्हों की झलक देते हैं जो आपके लिए बेहद खास है। कोई अपनी माँ को याद करता है, कोई अपने पुराने दोस्त को, कोई अपनी पहली मोहब्बत को, और हम उन सारे लम्हों को, उन सारी यादों को बड़े ही अदब और मोहब्बत के साथ सहेजते हैं।
1: और दोस्तों, यही तो सबसे खूबसूरत बात है इस प्रोग्राम की। हम सिर्फ रेडियो पर बैठे दो आवाजें नहीं हैं, हम वो जरिया है जिसके जरिए आप अपनी दिल की बात, अपने अनकहे लफ्जों को अपनों तक पहुंचाते हैं। हम आपकी उन बातों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं और फिर उन्हें आवाज देते हैं, ताकि वो बात सिर्फ आपके दिल में ना रहे बल्कि उस तक पहुंच जाए जिसके लिए वो कही गई है।
0: दोस्तों, कहते हैं कि वितस्ता की ये लहरें सदियों से बहती आई हैं, ना कभी थकी हैं, ना कभी रुकी हैं। हर मौसम में, हर दौर में अपनी उसी रवानी के साथ आगे बढ़ती रही है, हर किनारे को अपने प्यार से सींचती रही है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वादा है हमारा भी आपसे। ये प्रोग्राम भी वितस्ता की उन्हीं लहरों की तरह हमेशा चलता रहेगा, बिना थके, बिना रुके और बिना थमे। आपके एहसासों को साथ लेकर, आपकी खुशियों को शुरू में ढालते हुए, आपके हर लम्हे को अपने आगोश में समेटते हुए।
1: तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा लम्हा है, कोई ऐसा एहसास है जिसे आप किसी अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, अपनी फरमाइश भेजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए और बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के साथ। चलिए तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी बातों को सुरों में ढालने का। शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर का। आपकी फरमाइश लेती हूँ आज की पहली फरमाइश, जो आई है महेश नगर अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम, काका जगमाल सिंह, कुंदन लाल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुगले अजम से गीत। गीत के बोल है, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गीत को अपनी मीठी आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

तो श्रोताओं, लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले श्रोता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल है बेताब से गीत। गीत के बोल है क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। इस गीत को आवाज से सजाया है उदित नारायण ने। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि आप आने वाले दिनों में सिर्फ पुरानी हिंदी फिल्म के गीतों की ही फरमाइश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है अम्बाला कैंट हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है अमिता बत्रा, शनाया और तनुष। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बॉबी से गीत। गीत के बोल है झूठ बोले कौआ काटे। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और शैलेंद्र ने। अमिता बत्रा जी हमें बहुत सारी विशेष भेज रही हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच रेडियो तस्ता की पूरी टीम की ओर से। और ये गीत वो डेडिकेट कर रही हैं हमारे रेडियो तस्ता के सभी श्रोताओं को, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म दुनियादारी से गीत। गीत के बोल है नाव कागज का गहरा है पानी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये हमें प्यार भरा आदाब और नमस्कार भेज रहे हैं, हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है कुमार हेडा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सैयद मसरूर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म भरोसा से गीत।

गीत के बोल है इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। सैयद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं शाइना हसन, अक्सा, आदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइश।

सभी श्रोताओं के लिए अगली फरमाइश प्रस्तुत है और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से और भेजने वाले श्रोता हैं राम कुमार बांगड़। आप सभी का स्वागत है और इन्होंने ये फरमाइश हमें पहली बार भेजी है। राम कुमार बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कमलेश, साहिल, राजविंदर, प्रक्षित और अंजलि। ये सुनना चाहते हैं फिल्म खतरों के खिलाड़ी से गीत। गीत के बोल है तुमसे बना मेरा जीवन। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद नगमा।

इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं बंशीलाल संधु, कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म यादों की बारात से गीत। गीत के बोल हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी के लिए अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म CID से गीत। गीत के बोल है लेके पहला पहला प्यार जादू नगरी से। इस गीत को आवाज दी है शमशाद बेगम ने। रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। और इसके साथ ही रवि कुमार राहुल हमें लिखते हैं कि रेडियो विदस्ता को अगर हिंदी रेडियो के ऐप से सुना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सजेशन हमने ली है और आप अब से रेडियो विदस्ता हिंदी रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

0: इसी के साथ अगली फरमाइश जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। और इसी के साथ मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुरहेकर, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ज्वार भाटा से गीत। गीत के बोल है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार और लता जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।
1: ये समझो और समझाओ।

0: हमारे पास अगली फरमाइश आई है गांव बेलगांव तहसील मेहकर जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है सतीश वानखेड़े और उनका पूरा परिवार। इन्होंने हमें ये फरमाइश पहली बार भेजी है और साथ में ये कह रहे हैं कि रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हम सारे प्रसारित प्रोग्राम नियमित रूप से सुनते हैं। सभी कार्यक्रम सदाबहार और ज्ञानवर्धक होते हैं। सतीश वानखेड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमें फरमाइशें अपनी भेजते रहेंगे।
1: ये सुनना चाहते हैं फिल्म जीने की राह से गीत। गीत के बोल हैं आने से उसके आए बहार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपकी फरमाइशों पर आपके पसंदीदा नगमे सुनाते हैं। अगर आप भी इस फरमाइशी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपनी किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की, पंजाबी या हरियाणवी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। आपको ये फरमाइश हमें भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आपको अपना नाम लिखना होगा, जगह का नाम लिखना होगा और उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम लिखना होगा जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास आई है गांव जुगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म खुदगर से गीत। गीत के बोल है लोग कहते हैं पीला चांद। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी फरमाइशें हमें भेजने के लिए, और हम आपको इस मनमोहक गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और हमें आप दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को दिन के 2 बजे। आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम शुक्रवार को दिन के 2 बजे आता है और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: इसी के साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: दिल तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है।

0: की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
1: 50 से 60 साल, दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है, घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
0: 60 से 70 साल, दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
1: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स, दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और

0: अस्पताल पहुंची। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: दिल तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

प्यार का एक सुरीला नगमा है जिंदगी, सांसों की रफ्तार कहती है जी लो इसे, कल ये समा हो ना हो।

खुशबू तेरी मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस को बहुत देर लगती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आती है।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

दिल में एक तूफान सा उठ गया, उसने मुस्कुरा के देख लिया, वो हुस्ने मुद्दसम कातिलाना खूबसूरत है। मैंने जो उसे देखा, सारी बजम ने उसे देखा।

दिल दे के जान लेने वालों पे नादान जमाना हंसता है, दिल की बस्ती का लुटेरा तो तेरे ही मन में बसता है।

सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है।

मोहब्बत की सल्तनत पर राज हमारा आधा आधा है, कभी न छूटेगा साथ यही वादा है। और इसी वादे के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है और इस बार इसकी थीम रखी गई है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। ये अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है और इसे बेहतर बनाना हम सब का काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहां जाइए, वहां की जरूरतों को समझिए, यही इस थीम का असली संदेश है।

0: तो आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी

0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं

0: अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं,
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

دوستو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں رمیش مراٹھا۔ نمستے۔

और सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंडक का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहां लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी सी है

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ, रूह में उतर जाती हो, ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो। इन हवाओं में मुस्कुराते हो, इन फिजाओं में गुनगुनाते हो। जब जब भी तेरा जिक्र होता है मैं महकता हूं।

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसम की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और जो आप सुझाव और फीडबैक भेजते हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। आज की ये सुरीली मुलाकात भी अब समापन की ओर बढ़ चली है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी शाम को थोड़ा खुशनुमा बनाया होगा। दोस्तों, आज का दिन एक खास ऐतिहासिक वजह से भी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज वे मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक सेवा में अपने 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से उन्हें जनसेवा के इस सफल और प्रेरणादायक सफर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद सार्थक विषय पर। आज का विषय हमने चुना है जनता की सेवा और नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाना एक बड़ा दायित्व है। एक नेता या किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी गुण होता है जनता के प्रति जवाबदेही और उनकी भलाई को सर्वोपरि रखना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में बना रहता है तो उस पर न केवल काम करने का बल्कि लोगों का विश्वास बनाए रखने का भी दायित्व होता है। यह जिम्मेदारी केवल बड़े पद पर बैठे लोगों की नहीं बल्कि हम सभी की है, जो अपने अपने स्तर पर समाज और देश के प्रति जवाबदेह होते हैं। चाहे कोई शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो या फिर कोई सामान्य नागरिक, हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। जब हर व्यक्ति अपने दायरे में ईमानदारी और निष्ठा से अपनी भूमिका निभाता है तो पूरा समाज एक मजबूत और भरोसेमंद ढांचे में बदल जाता है। नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है बल्कि उदाहरण बनकर आगे बढ़ने का नाम है। दोस्तों, आइए आज हम अपने अपने दायरे में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं, क्योंकि समाज और देश की असली प्रगति तभी संभव है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझे। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और आशा करता हूं कि इस विषय ने आपको काफी सारी जानकारी दी होगी, प्रेरणा भी दी होगी। तो हर दिन की तरह आपके लिए 4 पंक्तियां लाया हूं जो आप सभी के नाम है। आज की पंक्तियां ये है, जिम्मेदारी निभाना कोई आसान काम नहीं होता। जिम्मेदारी निभाना कोई आसान काम नहीं होता, बिना निष्ठा और ईमानदारी के ये नाम नहीं होता। वितस्ता भी तो हर किनारे का ख्याल रख कर बहती है। वितस्ता भी तो हर किनारे का ख्याल रख कर बहती है, ये सिखाती है सच्चे नेतृत्व बिना सेवा भाव के नहीं होता। ये सिखाती है सच्चा नेतृत्व बिना सेवा भाव के नहीं होता। दोस्तों, ये थी 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, और जाते जाते आपको और जानकारी देते हैं। आपको आज बता देते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर, और हमारा नंबर आप नोट करें। उसके बाद आपको बताते हैं कल के कार्यक्रमों का विवरण। हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 8 अक्टूबर 2026 को हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर कल वायु दिवस पर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम
एपिसोड 3 आप सुनेंगे वायुसेना विशेष, प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 9 होगा गुरु दक्षिणा, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बजे मिले जुले गीत आस पे जीना होगा शीर्षक, पेश करेंगे रमेश मरहटा। और 10 बजे होगा पंजाबी में कार्यक्रम दिल दिया गल्ला, पेश करेंगे ललित शर्मा लाड़े। संगीत की सभा जारी रहेगी, 7 बजे पुनः प्रसारण होगा फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 3 वायुसेना विशेष। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मरहटा। ये था कल का कार्यक्रमों का विश्लेषण। और तो दोस्तों बस आज यहीं तक, आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि ये बातचीत आपके मन में जिम्मेदारी और सेवा भाव का एहसास जगाया गया होगा और इसके प्रति एक नई समझ जगा गया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।